0: हेलो हेलो,
1: हेलो, दिखे तस्सीगा येशु ख्रिस्तुस
0: मिंदर क्या मैं
1: तो दीर्घमशाल और रोज़ जी तेरे आलम चलादम इलिस में कोटा गया ये अचलाद बड़े भी बैठेगे समागम जो जुलासा ये उनोकामनक तन्मान्यानक सिकरेर एस फ़ोन्टोस सांदेकेर önökért, a Mária Rádió megmaradásáért, a világ békéért. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen, maradjon velünk, imádkozzunk együtt!